गुरु प्रसाद उतार खास कसपत का पादशाह दसवीं काल भी रखी रक्षा हमने सर्व लो दी रक्षा हमने सर्व काल जी दी रक्षा हमने सर्व लो जी दी सदा रक्षा हमने बंतन बही बिलल तल महान जयते पुसो करुणा निदान जग मगध तेज।

0: पुस्तक संपूर्णम।
1: स्वर्ग महला पहला आपे पांडे साजन आपे पूर्ण लेकिन समय एक चले रहन चले एक ने हाली पैसा।

पड़ला सबकिन तेरे बस तेरा कर पला तेरे करन द बधाई तुझ कर माण महता तेजा अपना पजर सर्व कला।

पुत्र पवन महीप सुर नर असुर नीत नीत वन तृण कहत त्वा सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम बरनत सुमत

तंग ना मित्रंग ना सतरंग ना पितरंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना तामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सतरंग ना पहमंग अलेखंग अपेखंग अजूनी सरूपंग सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध रूपंग नहीं जान जाई कछु रूप रेखंग कहा बास ताको फिर कौन पेखंग कहा नाम ताको कहा कह कहा वह कहा कह बखानो कह मैं न आवै न रोगंग न सोगंग न मोहंग न मातंग न कर्मंग न परमंग न जन्मंग न जातंग अद्वैखंग अपेखंग अजूनी सरूपे नमो एक रूपे।

दक्षा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे ना नेहं ना गेहं ना शोकं ना सागं परेयं पवित्रं पुनीतं अताकं ना जातं ना पातं ना मित्रं ना मंत्रे नमो एक तंत्रे ना धर्मं ना परमं ना सर्मं ना साके ना बर्मं ना चर्मं ना कर्मं ना बाके ना सत्रंग ना मित्रंग ना पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहूं कंज के मंज के परम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के पेश के धर्म तामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं

कहूँ नागबानी कहूँ गारड़ू गुड़ कथा कहानी कहूँ अछरा पछरा मछरा हो कहूँ वीर विद्या अभूतंग प्रभा हो कहूँ छैल छाला तरे छत्र धारी कहूँ राज साजंग ते राजा धिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेती अछय आदत वै विधाता न त्रस्तंग न ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग त्वस्तंग अभूते त्व प्रसाद।

अनभूत तेजन छिजगात करता सती हरतासना दासन अडोलन भूत करम दाता दयालन भूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय कर्म भ्रम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्युतपान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं परम भेख जय कर्म भरम नहीं जात पात जय नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं बरग ब्याज जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नाश जय आदि अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास यास नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग छैस

नाव है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेग है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेग है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अपेघ है न दात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अपेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अपंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न पंड है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है प्रिया है पवित्र है पुनीत है परमाथ है न सीत है न सोच है न क्राम है न काम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नरको स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र की विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैग है न पीक है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदैव दयाल रूप है अगंज है अपंज है अपरम है अपूत है अछेद छेद है सदाया गंज गंज गंज है अपूत अपेक है बलि अरूप।

अगाध अद्वैग सुभूत भविक भवान अभाह अंत विहीन अनात्मा अपदाग अदोख अछिद्र अछाह लोगन के करता हरता जल मैं थल मैं भरता प्रवाह दीन दयाल दया कर श्री पात सुन

तुमरी सुध सुंदर श्री पद्मापत लाहा। रोगंते अर सोगंते जल जोगंते बफांत बचावा। सत्रो अनेक चलावत कहाव तौतन एक न लागन पावा। राखत है अपनो करदा कर पाप समूह न पेटन पावा। और की बात कहा कह तो सौ सो पेट ही के पट बीच बचावा। जच भुजंग सुदानव देव पेव तुम्हें सब ही कर त्यावै। भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सबै सिर न्यावै। पाए सकै नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत वेद बतावै। कोई थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवै। नारद से चतुरानन से रुमनारिक से सब हूँ मिल गायो। वेद क देव न भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सकै नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सनंतन त्यायो। ध्यान तरो तह को मन मै जय को अमितोज सब।

अंतर के चलैया चित छत्र के तरैया छत्र थारियो के छलैया महासतरन के साल है। दान के दिवैया महामान के बटैया वसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पाव हिंगला हिमाल त्याव गुर गर दे जी गुण गाव तेरे नाम है। जोगी जोग साध पौन साधना कतेक बाधा अर्भ के अर्भी आराध्य तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माना कंधारी कुरेसी जाना पछम के पछमी पछान निज काम है। मराठा मगेले तेरी मानसो तपस्या कर दृढ़ व तिलंगी पहचान धर्म धाम है। बांग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आगे में चलत है। रोह के रोहेले मांग देश के मघेले वीर बांग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गाव चीन मचीन के शीस न्याव तिब्बती ते आए दुख देह को दलत है। जिन्ना तोहे त्यायो तिना पूरन प्रताप पायो सर्ब तन धाम फल फूल सो फलत है। देव देव दान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कही अत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पैना दीन साध अधीन कही अत है। पाई है न पार तेज पुंज में अपार।

जन जुग मैं सुखवासी से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन हर निर्भव त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी।

सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकार

सिर न्याए। पंथ चलै तब जगत में, जब तुम करो सहाय दोहोरा। जे जे तुमरे ध्यान को, नित उठत आए हैं संत। अंत लहेंगे मुकत फल, पावेंगे भगवंत दोहोरा। तिन बेदियन के कुल बिखै, प्रगटे नानक राय। सब सिखन को

लख तप ऊपर तीर्था सहज योग बेपाण लख सुरतन संग्राम रण में छुटे पुराण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करता है करना किया लिखिया आवण जान।

पौड़ी सच्चा साहेब एक दिन सतु सत वरताया जिस तू दे तिस मिलै सचता तिन सत कमाया सतगुर मिलिया सच पाया जिनके हृदय